0: You are listening to songs sung by devotees from the United States of America.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
3: Salok Mahalla Tija Abhe Agate Henaya Kiyano Jenke Chitme Parma Tisde Dite Nanaka Teho Jeha Dharma Apay Niranjana Parma Pada Taka Pukha Hoye Tiska Pujan Nanaka Virla Paye Koye Mahalla Tija अभ्यागत है ना आखियां जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महल

सच, कथनी बदनी करता फिरै हुक्म न बूझै सच। नानक हर का भाणा मन्ने सो भगत होए, विण मन्ने कच्चन कच। महला तीजा, मनमुख बोल ना जा।

नाम जपे नमो आराधे तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवण दाता नाहीं किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस का ससादा बाहरा सच्ची वड़ियाई है जिसनों बक्से तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख सै प्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सहित सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे स्त्री पुरखे खटिया पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक मुहावे चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए।

बोलै चरपट सत स्वरूप परम तंत मै रेख न रूप महला पहला सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म गगन मंडल मै रूपै थम अहन से अंतर रह ध्यान ते बैरागी सत समान बोलै परथर सत स्वरूप परम तंत मै रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजै भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर्म है विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक मान है सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप तो रहना। हर नाम जपै

रोवै दसर लंक गवाए, जर सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव पय मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर। रोवै जन्मे जा खोए गया, एकी कारण पापी पया। रोवै सेख मसा एक पीर, अंतकाल मत लागै पीड़। रोवै राजे कन पड़ाए, कर कर मांगै भिखिया जाए। रोवै किरपन संचै धन जाए, पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाए पतार, नानक दुखिया सब संसार। मन्ने नाओ सोई जिन जाए, औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा, जप तप सब किश मन्ने है, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वरतदा, गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मिलाया। सब किश

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जिहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगै आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निरवैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवां कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा

कसम खुजलो सा सम सभिखो साल कसम मिटे अभिमान साल कसम पटे सो ज्ञान साल कसम बुझे प्रवनेरा सासम सब होतन बेरा साल कसम पाए नाम रतन साल कसम गे कुपर जतन साल की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साल की शोभा ब्रह्मा सुमानी साल कसम गोचर मिले साल कसम सदा पर फुल साल कसंग आवे बस पंचा सा संग अमृत रस पंचा सा संगो सब की

परसों प्रसन्न। सात संत सुमन सभी साधु का समापनित, सात संत के सुन बैसा कसन बिंगा पैर, सात कसन आई को मंदा, सात संत जाने परमानंदा, सात कसन आई होता, सात कसन तजय स्वभाव, आपे जाने सात बढ़ाई नान सात प्रभु बने आई, सात कसन कबू तावे, सात कसन सदा सुख पावे, सात संग बस्ता गोचर लय, साधु कै संग अजर सह।